के मिनु मिनु हाबी खुशी की जिल जिल बीबी दिन दुन हुलुओ रिम जिन जिन जिन जिन ना पसी की हलुओ जी भूंबा